0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं
1: है?
2: मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो,
5: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो
3: on a ride.

Welcome back, party people. Club Mirchi जा रही है DJ Richard Mirchi और यहाँ तक आपके साथ. Weekend sunny हो या rainy, party mood sunny तो होना ही है. तो let's hear sunny together.

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोंतिका.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. अब बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग, और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंथिका बेबी. आज का ड्रेस कोड व्हाटएवर मेक्स यू फील एक्सपेंसिव एंड मूड अननेसेसरीली कॉन्फिडेंट. बेसिकली वीकेंड का नेशनल एंथम बज रहा है अभी, सो ले

पीपल, अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट. अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड. क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Only on Radio Mirchi. It's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

The beat goes on with

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

बजाओ म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची रेस विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम टिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन टू गेट स्टार्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज़ हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन. टाटा.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो

0: मिर्ची मिर्ची मिर्ची
1: हेलो बॉडी पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉरिजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंधिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंटडाउन।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची। वीकेंड ऑफिशियली ऑन है, बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है। कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग, और हम भी टेक्निकली यंग ही है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला. ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.

सॉरी पीपल, अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज।

बूम बूम पाओ, म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन टिका.

back to Club Mirchi. Weekend officially on है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. Keep the volume up because the night is young और हम भी technically young ही है.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
2: क्लब मिर्ची.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Hit,
1: super hit. Only on Radio Mirchi. It's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

आप मिर्ची इज बैक एंड सो इज डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर ओन टिका वीकेंड का गोल्डन रूल डोंट काउंट कैलोरीज डोंट काउंट आवर्स एंड डेफिनेटली डोंट काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू हर्ड दिस सॉन्ग बस वाइब काउंट करो यार 1 2 3 ओके अब काउंटिंग भी बंद जस्ट डांस

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयन टेक अस स्टार्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर इज द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन. टाटा.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Milci. Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua, la murga.
1: Milci, murga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया। उसमें ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपलसरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
4: नंबर 20।

तभी नोटिस किया है कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन, दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है। हमें

बेशरम रंग एफ्रोबीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस।

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है ये आपको अच्छी तरह मालूम है।

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, बट इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: बहुत अच्छा है, क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बना दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को फील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। डूड, जस्ट थिंक ऑफ सत्या एंड कंपनी एंड यू विल नो व्हाट आई मीन। लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म्ड गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ पाया था। He was looking towards the future with the soundtrack of एक विलन। ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है। This is my rewind track of the week। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं। Top 20 Rewind।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेनस्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बालकी और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बालकी ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, नितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल ग्लिम्प्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एयर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं। 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंडट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वाज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, इंटीमेट, हेडफोन्स वाला गाना, ऐसा गाना जो शोर में नहीं तन्हाई में काम करता है। और फिर मुझे इसकी वजह से इतने सारे गाने याद आए, वेकअप सिड का एक तारा, अनजाना अनजानी का टाइटल ट्रैक, फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी। ये ऐसे गाने जो किसी एल्गोरिथम के हिसाब से ऑब्वियस ब्लॉकबस्टर मटेरियल नहीं लगते, लेकिन ये गाने सिर्फ हिट नहीं होते, ये आपके अंदर एक घर बना लेते हैं। और शायद यही एल्गोरिथम हार जाता है। डेटा बता सकता है कि हम क्या सुनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम किस गाने से प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है। ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था, वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जसलीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहां। Top 20 Rewind।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता वो स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मल नहीं, नहीं कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कन्फ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब। नंबर 9।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

0: ये गाना आया तो 2026 का, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2005 में। एक सिंगिंग रियलिटी शो में एक लड़का विनर बना था और दूसरा सिक्स्थ आया था। विनर का नाम था काजी तौकीर और सिक्स्थ प्लेस पर आया था अरिजीत सिंह। आज काजी बिग बॉस के घर में है और एक नई जनरेशन उन्हें फिर से प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत, आज हम उनका नाम उस लिस्ट में लेते हैं जहां प्लेबैक लेजेंड्स बैठे हुए हैं, रफी, किशोर, सानू, उदित, सोनू और अब अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा। जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, कभी ऐसे वो करता नहीं, यू नो
2: दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग, बहुत सिंपल।
1: स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, इट्स अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो 17 तब था वैसा ही आज भी।
3: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
0: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा, वो वक्त आ रहा है। लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता, एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना। नंबर 5।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मिल गया
3: मैडम आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी याद आया है आपका
1: नहीं नंबर कहाँ से मिल गया
3: वही आपको बता रहे हैं आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए जब दाएं मुड़े हैं ना हम मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के आप जब रिक्शा पे बैठी है ना मैं हम कसम खा रहे हैं हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए हम धोलाए भी नहीं है
1: क्या तुझे पागल लगता
3: नहीं वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे
1: क्या कहना है
3: मैडम आई लव यू हम आपको देख के इतना
1: मेरी
3: बात है चारू चारू फोन मत रखना हेलो चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था रिक्शा पे बैठ के गई थी मैंने तो मजाक किया तुम्हारा मुर्गा बना दिया आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार आई लव यू मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत मान यार थोड़ा सा नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 4

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। लेकिन इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में। और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक। और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज माय पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 2.

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है। मुझमें कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट

0: sensitive things, you know, losing someone you love. So very painful moments, and it kind of satiated me as an actor.
1: यार कभी कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं. एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए. उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था. और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया. एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज. फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है. नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज. दिस इज तेरा मेरा रिश्ता. नंबर वन.

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virgua, la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया
1: उसमें,
2: ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें, और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

के मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे समझ का लगा, रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga. Milci, burga. Burga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
2: मेरी
4: बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
4: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: Wanna nacho all night? Do you feel alright? Wanna nacho all night?

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
1: Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं
3: दीदी, मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है। अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। एल्बम सर जी, हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए, एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं
2: दी थी
1: मैं
2: कल को। अरे लेंस
1: ऐसे
2: पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, उनके बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना तो हीरो के बारे में है ना ही हीरोइन। दिस इज द शो जहां मेन कैरेक्टर इज गुड म्यूजिक एंड गुड म्यूजिक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहाँ पे हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है। हम अपना 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक करेंगे, सम स्पेशल गाना शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौड़ की कॉम्पोजिशन, जी पार्क का प्रोडक्शन, संजू राठौड़ की आवाज में। गाने का नाम है बैंगल्स। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा ये गाना बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद राघव कौशिक की आवाज रेखा भारद्वाज के साथ, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है दरमिया। दिस इज द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन। मुसाफिर कैफे ओटीटी शो से है ये। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगल्स ऑन नंबर 10 देन दरमिया ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक, अमृता सलूजा के लिरिक्स, गाने का नाम है दरमिया, मुसाफिर कैफे से है ये गाना, द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन, पिछले हफ्ते से चार्ट पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika, मतलब मेरा नाम तो मम्मी ने कनिका ही रखा। पिछले 7 साल से आई एम ब्रिंगिंग दीज टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक फॉर यू, एंड तब से आरजे कनिका। इट्स क्वाइट ऑड, पता है, बहुत लोग मुझे जो सिर्फ इंस्टाग्राम से जानते हैं, जब मिलते हैं तो हाय आरजे कनिका बोलते हैं, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। It's not a bad thing, you know. Everybody wants that takeaway factor with their art, right? Gala number 9 पर हमने दरमियां सुना रेखा भारद्वाज जी की आवाज में। जिस भी गाने में रेखा जी की आवाज होती है, वो एक सेकंड का गाना सुनते ही हम समझ जाते हैं कि अरे ये तो रेखा भारद्वाज जी हैं। Such strong is her voice, her identity. सोचने वाली बात है, इतने गाने आते हैं, इतने गाने जाते हैं, गाने सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, लोग कुछ हफ्ते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, पर कुछ गाने और कुछ आर्टिस्ट की आवाजें हमें हमेशा याद रहती हैं। इसे ही हम वो टेक अवे फैक्टर कहते हैं। वो आर्टिस्ट की आवाज हो सकती है, जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज है, AR रहमान जी की आवाज है, सुनते ही पता चल जाता है कौन है, या फिर वो एक कंपोजर की ब्रिलियंस हो सकती है जो वो गाने में एक इंस्ट्रूमेंटल पीस या सोलो के साथ या किसी गिटार सोलो से इंट्रोड्यूस करें। इतने सारे आइकॉनिक गाने हैं जिनकी गिटार सोलोज या इंट्रो म्यूजिक को सुनते ही हमें पता है कि कौन सा गाना है, जैसे कि दिस वन। मैंने गाने का नाम नहीं बताया, गाने की पहली लाइन नहीं आई, आपने सिंगर्स को नहीं सुना, एंड यू नो इट्स साथिया का म्यूजिक। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको एक 90s के इंडी पॉप क्लासिक का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है। काउंटडाउन पर आगे चल के हमारे कसर क्लासिक में ये पूरा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज अ नई नवेली एंट्री। इस गाने को छोटे बच्चे गा रहे हैं, कॉलेज वाले लोग रील्स बना रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं और आप इसको ऐसा एटीट्यूड स्टार्टर लाइन की तरह बोल रहे हैं। गाने का नाम है बूम शाकालाका बाय धंधा न्योलेवाला एंड कृष्णा। फिनोमिन हिसाब का प्रोडक्शन। बूम शाकालाका इज अ नई नवेली एंट्री, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: Number 8.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sakka bana
3: Ya bana
2: Murga murga Nabeez wala murga
3: Mirchi murga
4: हेलो
5: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
4: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
4: क्या तुझे पागल लगा?
5: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
4: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो, हेलो हेलो हेलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर लिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया, आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7
6: हाउ चुप।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साडी सुन। दिस सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है ये गाना, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly believe gaane share karne se pyar badhta hai. Is show ke zariye jo gaane aap mere saath recommend karte ho aur gaano ke saath saath jo aap apne experience, kahaniyan, puri gossip bata dete ho na ki yaar tab hua tha aur ye gaane ne ye kiya tha. सबसे पहले तो कस के थैंक यू। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अश्काय, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर रिकमेंडेशंस। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जो ना तो पुराने साउंड करते हैं और ना ही नए हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we're going to feature this week is
2: Duba Duba Rehta Hoon Aankhon Mein Teri Deewana Ban Gaya Hoon Main Chaahat Mein Teri।
0: गाने का नाम है डूबा डूबा बाय द सिल्क रूट, मोहित चौहान की आवाज में। ये गाना 1998 में रिलीज हुआ था, सिल्क रूट की डेब्यू एल्बम बूंदे का पार्ट था। आई थिंक आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग। 1998 का वो दौर था जब पॉप म्यूजिक का मतलब बिल्कुल भी फिल्म जैसा म्यूजिक बनाना नहीं था, बल्कि ये गाना अपने आप में ही एक दुनिया थी, अपने आप में ही एक फिल्म थी। एंड समटाइम्स आई थिंक कि क्या तब सिल्क रूट को इस बात का कोई भी अंदाजा था कि वो हमें एक ऐसा गाना दे जाएंगे जो पूरे 30 साल बाद भी हम इतनी ही इंटेंसिटी के साथ सुनते हैं। आज भी इस गाने को सुन के एकदम मन करता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं, कि शाम का वक्त है, सूरज अभी ढला ही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है बट रोशनी भी है, पास में एक नदी बह रही है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, चाहे जगह असली हो या ना हो, बट दिस फीलिंग एंड दिस सॉन्ग ऑलवेज इमोट्स दिस। कुछ गाने भी तो हमारी जिंदगी में मेमोरी का टिकट होते हैं, दे टेक अस बैक टू दैट ओल्ड प्लेस, कोई भूला हुआ दिन, कोई दबी हुई मेमोरी। And this song by Mohit Chauhan and Silk Route is exactly that. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड चलो उस नदी के किनारे जब ढलती हुई शाम में मोहित चौहान की आवाज में सिल्क रूट का गाना डूबा डूबा आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Man oh man, the song just gets better with every year. Mohit Chauhan ki awaaz mein, that was Dooba Dooba on our cassette classic this week. इस सेगमेंट के बाद मुझे सब अच्छा अच्छा लगने लगता है. जैसे आई हैव गॉन बैक टू द सिंपल टाइम, जब हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त था. वक्त था वक्त बर्बाद करने का, और वक्त बर्बाद करने का कोई गिल्ट नहीं था. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ 90s 2000s के वो कौन से आइकॉनिक इंडी पॉप गाने हैं जिनको जब आप आज सुनते हो सो यू आर टेकन बैक टू दोस सिंपलर टाइम्स. आई एम नॉट दैट ओल्ड बट आई एम एन ओल्ड सोल. लेकिन मैं बात तो ऐसे करती हूँ, ओहो पुराने दिन सिंपल टाइम्स, बट इट इज ट्रू. But then there are some songs, आज के आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी म्यूजिक जो ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंपल कर देते हैं. एंड फरक इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोज आर्टिस्ट. काउंटडाउन का अगले वाला गाना रिटन एंड कम्पोज बाय फरक, गाने का नाम है तारे. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके तारे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 6. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय. नंबर 6.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है उड़ी उड़ी दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुन के आपका दिल अनलॉक हो जाता है। दे साउंड लाइक फ्रीडम। मन करता है कि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलूं, दोनों हाथ फैलाऊं और चिल्लाऊं, मजे करूं, नाचूं। They put you in a groove, they put you in a good mood. And there are some incredible independent songs. जैसे चाल में मस्ती ला देते हैं, जो हमारे दिल को अनलॉक कर देते हैं, which sound like freedom. And I'm going to talk about one such song. It's one of the most celebrated collabs of last 10 years. I'm talking about Divine and Raja Kumari ka City Slums.

ये गाना 2017 में आया था एंड व्हाट अ वंडरफुल कोलिजन ऑफ टू वर्ड्स. एक तरफ राजा कुमारी, एलए बेस्ड पॉप सिंगर सॉन्ग राइटर, मीट्स मुंबई के अपने गली रैपर डिवाइन. एज इट साउंड्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, राइट, बिकॉज हम इस तरह के कोलैबोरेशंस देखते रहते हैं इंटरनेशनल एंड इंडियन आर्टिस्ट के बीच में देखते हैं, बट दिस कोलैब इन 2017 मेंट सच अ बिग डील. राजा कुमारी कैलिफोर्निया बेस्ड, वो ऑलरेडी बहुत बड़े अमेरिकन आर्टिस्ट के लिए गाने लिख चुकी थी, उनके साथ कोलैबोरेट कर चुकी थी, एंड उनका तेज सरार English flow with divine sounds incredible, like a beautiful cocktail in the song. Why I love listening to this song is that ye gana na humko hamari identity se bahut close feel karwata hai. It makes you feel good about yourself. It makes you feel good about where you belong to. To apne radio ke volume bada lijiye. Raja Kumari and Divine ka gana, gaane ka naam hai City Slums. It's got an earworm hook and I'm sure you will love it. Playing right next for you on Gaana Indie Top 10, bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: गाना इंडी टॉप टेन
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
3: नंबर थ्री।

0: इनक्रेडिबल म्यूजिक डुओ फ्रॉम कुरुक्षेत्र बंजारे का गाना, गाने का नाम है बरसात। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बरसात वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
0: Bar, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Top 10 pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Aadhe se zyada time to aap gaana sun lete ho, gaane ka naam bhul jate ho aur fir mujhe message karte ho ki gaana number 4 pe kaun sa gaana bola tha. So before we move on to the top 2 songs of the week, aapke liye jo gaane ka naam bhul jate ho, let's do a quick recap right from the top. Gaana number 10 par this week was Sanju Rathod ka Bangles. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज का दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: तेरे मेरे दरमिया।
0: उसके बाद गाना नंबर 8 पर नई नवेली एंट्री कृष्णा धंधानियोली वाला का बूम शाकला का डेब्यूज ऑन गाना नंबर 8।
3: बूम शाकला का, करे बूम शाकला का, दिला दे बूम शाकला का।
0: हर्ष नसीदीप क्लेयर का साडी सुन ऑन गाना नंबर 7। फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। दिस ब्यूटिफुल फोक पॉप सॉन्ग्स बाय अनीश सरकार हृदय उड़ी उड़ी दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन था दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
4: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मिर्गे।
0: डबल वैमी बाय बंजारे, उन्हीं का गाना बरसात हमने सुना ऑन गाना नंबर 3।
5: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा जावेगी।
0: And the top 2 songs of the week, बादशाह शर्वी यादव हितेन का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, ये गाना पिछले हफ्ते से एक नहीं दो नहीं पूरा 3 पोजीशन ऊपर जंप करके बादशाह का बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद न्यू मेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार है ये गाना, टिका हुआ है 3 हफ्तों से ऑन गाना नंबर 1, 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, Yet again on Gaana number 1. ये दोनों गाने back to back, banger on number 2, शीशा on number 1, only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका, enjoy.

Bam. Bam. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। Hi, this is the Mirchi Top 20. My name is Suren Sundaram. And शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
3: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन, दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

सुइयों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। अंधेरा

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, बट इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक का... क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: actually... आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ए पगला.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 17.

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को हील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। Dude, just think of Satya and Company and you'll know what I mean. लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास नहीं छोड़ पाया था। He was looking towards the future with the soundtrack of एक विलन। ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है। This is my rewind track of the week. मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं। Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 15.

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल क्लिम्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंडट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वाज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, इंटिमेट, हेडफोन्स वाला गाना, ऐसा गाना जो शोर में नहीं तन्हाई में काम करता है। और फिर मुझे इसकी वजह से इतने सारे गाने याद आए, वेकअप सिड का एक तारा, अनजाना अनजानी का टाइटल ट्रैक, फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी। ये ऐसे गाने जो किसी एल्गोरिथम के हिसाब से ऑब्वियस ब्लॉकबस्टर मटेरियल नहीं लगते, लेकिन ये गाने सिर्फ हिट नहीं होते, ये आपके अंदर एक घर बना लेते हैं। और शायद यही एल्गोरिथम हार जाता है। डेटा बता सकता है कि हम क्या सुनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम किस गाने से प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है, ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था, वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जसलीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहां। Top 20 Rewind.

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे नॉर्मल नए नए कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कंफ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब। नंबर 9।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

0: ये गाना है तो 2026 का, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2005 में। एक सिंगिंग रियलिटी शो में एक लड़का विनर बना था और दूसरा सिक्स्थ आया था। विनर का नाम था काजी तौकीर और सिक्स्थ प्लेस पर आया था अरिजीत सिंह। आज काजी बिग बॉस के घर में है और एक नई जनरेशन उन्हें फिर से प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत, आज हम उनका नाम उस लिस्ट में लेते हैं जहां प्लेबैक लेजेंड्स बैठे हुए हैं, रफी, किशोर, सानू, उदित, सोनू और अब अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा। जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, कभी ऐसे वो करता नहीं, यू नो
2: दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग,
1: बहुत सिंपल। स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीदती, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो 17 तब था वैसा ही आज भी।
3: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
0: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा, वो वक्त आ रहा है। लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता, एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना। नंबर 5।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय नहीं
1: दीदी मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट नंबर 4।

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया, और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। देखें इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में, और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक, और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है, और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले, तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज अ पिक ऑफ द वीक।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला
2: तेरा क्या होगा कालिया
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
2: अब मिर्ची का
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: नंबर टू

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीस करना है। मुझ में कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक हिम, सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग, जहाँ देयर कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टंबल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, losing someone you love, so a very painful moments, and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है, बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर वन।

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिडशीट ऑफ 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।